0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: सुनिस ना आइले हाम्रो गर्नेमा
2: इस समय को साथ मा जितु सुनचा दी पसल
3: भुसाल पेट्रोल पंप संगई जोड़िए को डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तरफ जाने बाटो मा कुना को साइड मा
2: विश्वासिलो पार पर्दो र आकर्षक डिजाइन का घर गहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
1: सुन्दर हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

एस आधी खोला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार स्याङ्जा।

एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: इस समय को साथ में जितु सुनचांदी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: नमस्ते महोत्सव के अपने गायक तिलक बमल्ल तपाई यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ चांगर जिल्लाको पहिलो आवाज आदि खोलाको स्पन्दन सामुदायिक रेडियो आदि खोला 105.4।